अनातोलिया लीकिया का घर है, रोशनी की सरजमीन। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि लीकिया को रोशनी की सरजमीन कहा जाता है, क्योंकि लीकिया का हर शहर कदीम ज़माने में सितारे की तरह चमकता था। अंताल्या की सूबाई सरहदों के अंदर वाक़ ज़ांतोस, लिटोन, पतारा, ओलम्पोस और फासिलिस 23 शहरों पर मुश्तमिल लीकियन लीक के अहम तरीन शहरों में से एक हैं। ये वो शहर हैं जो अनातोलिया की हज़ारों साल की कहानी सुनाते हैं। ज़ांतोस अपनी दुख भरी तारीख के साथ फिनिक्स की तरह अपने राग से दोबारा जन्म लेती है, और लेटून उसके दिलचस्प बुनियादों पर मबनी कहानियों के साथ इन शहरों में सबसे आगे है।

ज़ांथोस एक कदीम शहर है जहाँ एक से ज़्यादा तहजीबों का सुराग लगाया जा सकता है। अगरचे यह अपनी गद्दार कहानी के साथ तवज्जो मबजूल करवाती है, लेकिन उसकी एक और खसूसियत है जो उसे दूसरे शहरों से मुख्तलिफ बनाती है। लीकियन दौर में तामीर शुदा कब्रों के पत्थर और चट्टान के मकबरे, चट्टान के सरकोफिक्स के मकबरे जो लीकियंस ने चूने के पत्थर से बनाए थे, जो खित्ते के कुदरती मवाद हैं, आजकल सबसे दिलचस्प सकाफती विरसे में शुमार किए जाते हैं। शहर में तकरीबन 15 बड़े तामिर किए गए मकबरे हैं, और माहरीन के मुताबिक इस इलाके से बाहर उन मकबरों की कोई मिसाल नहीं मिलती। लीकियन जबान में पत्थर के सबसे तवील नोश्ताजात भी सिर्फ यहीं मिलते हैं। ज़ांथोस के पास 3 अगोरास, एक थिएटर और एक बड़ी मरकजी सड़क भी है, जिसे पत्थर के फर्श के साथ मजबूती से बेनकाब किया गया है। कदीम थिएटर में ऑर्केस्ट्रा का गहरा गढ़ा इस बात का सबूत है कि यह ढांचा रोमन दौर में ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल होता था। थिएटर के स्टेज की इमारत के सामने की सजावट और पहली मंजिल आज तक बाकी है।

2,200 साल कबल तामिर किया गया थिएटर इन ढांचों में सबसे बेहतर हालत में है जो कदीम शहर लिटोन में आज तक देखा जा सकता है। शहर में खुदाई के दौरान 3 मंदिरों की बाकियात, एक यादगार चश्मा और कुछ नोश्ताजात भी दरियाफ्त हुए हैं। शहर का सबसे बड़ा मंदिर लिटो मंदिर है, जो अपोलो और आर्टिमिस की माँ लेटो के लिए वक्फ

लेकिन लिखा हर शहर रोशनी की सरजमीन अलग अलग वजाहत का मुस्तहिक है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए हम उन लोगों को मदऊ करते हैं जो इस मुतासिरकुन तहजीब के आसार को तुर्की के पहले तवील फासले पर चलने वाले रास्ते लीकियन वे पर जाना चाहते हैं। लेकिन वे एक मुनफरद रास्ता है जहाँ आप सियाहती मराकज़ जैसे पतारा, कालकान, काश, फेतिये, अपेरियाल, ओलंपस, समंदर के नीचे और बहुत से दूसरे अहम कदीम शहर देख सकते हैं। आप इस 550 किलोमीटर तवील रास्ते पर लीकियन तहजीब की अजमत का मुशाहिदा कर सकते हैं, कदीम रास्ते से मुतासिर होकर जहाँ फितरत और तारीख एक दूसरे से बगलगीर नज़र आती हैं। आज इस प्रोग्राम में हमने लीकियन लीग के दारकूमतों में से एक कदीम शहर ज़ांतोस के बारे में बताया जो कई बार अपनी राख से उठने में कामयाब हुआ, और उसकी दुख भरी कहानी कदीम शहर लिटोन जो किसी ज़माने में ख़त्ते का अहम दीनी और मिथोलॉजी मरकज़ था। नस्ल खान देरमेंज ओलू के कलम से तहरीर करता यह प्रोग्राम आपने सुना। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

और स्ट्रेटेजिक तरजीहात के मुताबिक अपनी अफ्रीका पॉलिसी को असर नौ तरतीब दे रहा है। केनिया फ्रांस को कई फवायद फराहम करता है। ये मुल्क मशरकी अफ्रीकी कम्युनिटी के अंदर अपनी इक्तसादी ताकत, डिजिटल मईशत की सलाहियत और इलाकाई सफारती असर व रसूख की वजह से आलमी क़ुव्वतों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मजीद बरआं, नैरोबी में अक़्वाम मुत्तहिदा के दफातर इस शहर को अफ्रीका के अहम तरीन कसीरुल जहती सफारती मराकज़ में से एक बनाते हैं। यह सूरत हाल फ्रांस के कसीरुल जहती पर जोर के साथ भी मुताबिकत रखती है। यह कोई इतफाक नहीं है कि मैक्रॉन ने सरबराही इजलास में केनिया को मौसर कसीरुल जहती का नुमाइंदा करार दिया है। केनिया के नुक्ता नज़र से इस सरबराही इजलास ने मुल्क को बैनुल अक़वामी निज़ाम में अपनी पोजीशन मजबूत करने का मौका फराहम किया है। रूटो इंतजामिया हालिया सालों में एक इंतहाई अमली और कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है। वाशिंगटन, बेजिंग और यूरोप के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करते हुए नैरोबी इंतजामिया खुद को अफ्रीका के आलमी सफारती मरकज के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। फ्रांस के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात भी इसी हिकमत अमली का हिस्सा हैं। ख़ास तौर पर यह इजलास कीनिया के 2027 के इंतखाबात से कबल सदर रूटो को बैन अवी साख और नुमाइश फराहम करने के लिहाज से अहमियत रखता है। दूसरी जानब नैरोबी सरबराह इजलास अफ्रीका में आलमी ताकतों के दरमियान बदलते हुए मुकाबले की भी अक्कासी करता है। एक ऐसे वक्त में जब चीन का इकतसादी असर व रसूख गहरा हो रहा है और अमरीका अपनी सिक्योरिटी पर मबनी अप्रोच को असर नौ तश्कील दे रहा है, फ्रांस अफ्रीका से मुकम्मल तौर पर पीछे हटने वाले अदाकार के तौर पर दिखाई नहीं देना चाहता। इसी वजह से पेरिस इंतजामिया अपनी पुरानी सिक्योरिटी हिकमत अमली को, जो फौजी अड्डों पर मबनी थी, लचकदार शराकत दारी के एक नए मॉडल में तब्दील कर रही है। कीनिया के साथ 2025 में किया गया दिफाई मुआहिदा इस तब्दीली की एक अहम मिसाल है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, समंदरी सिक्योरिटी और अमन मिशंस का अहाता करने वाला यह तआवुन जाहिर करता है कि फ्रांस अफ्रीका में मकामी शराकत दारों की सलाहियतों में इजाफा करने के मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। तहम इस तमाम तब्दीली के बावजूद ये कहना मुश्किल है कि अफ्रीका में फ्रांस का इमेज प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर हल हो गया है। ख़ास तौर पर साहिल के खत्े में बनने वाली फ्रांस मुखालिफ राय आमा की वजह से पेरिस के नए शराकत दारी के इकदाम को बारीक बीनी से देखा जा रहा है। इसलिए नैरोबी सरबराह इजलास को न सिर्फ एक सफारती मुलाकात बल्कि अफ्रीका के लिए फ्रांस की नई पॉलिसी की साख की तलाश के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। नतीजे के तौर पर नैरोबी में मुनाक़िदा अफ्रीका फॉरवर्ड सरबराह इजलास फ्रांस की अफ्रीका पॉलिसी में साख्ती तब्दीली का एक अलामती मोड़ है। पहली बार एक साबिक बरतानवी नौ आबादी में इसका इनकाद यह साबित करता है कि पेरिस फ्रांकोफोन अफ्रीका पर मबनी अपने रवायती नुक्ता नज़र की हदूद को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह सूरत हाल अफ्रीकी जियोपॉलिटिक्स में बढ़ते हुए कसीरुल जहती मुकाबले के इस नए दौर में फ्रांस की अपने लिए नए सफारती और स्ट्रेटेजिक रास्ते खोलने की कोशिशों की अक्कास है। केनिया इस अमल में न सिर्फ एक इलाकाई शराकत दार बल्कि अफ्रीका के एक उभरते हुए सफारती मरकज के तौर पर सामने आया है। और शाम के शुमाली और मशरकी अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवे जियोलू का इस मौजू पर तज्जिया पेश किया गया। आइंदे हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शोरश ज़दा अफ्रीका।